0: भुलाना। बेशक हम अजीज साहब को कभी नहीं भुला सकते, उनके गीत हमेशा गूंजते रहेंगे इन वादियों में। और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति का गाया हुआ ये शूर फिल्म का गाना है जो आज मुझे सुनना है उनकी याद में। इसको सुनने के लिए कुबीर मस्के, मोहम्मद अत्तार, अमोल कांबड़े, सरफराज आजम, इरम, तमन्ना, वहाबी फरजाना, फाई हुसैन, इन सब के साथ मुझे ये सुनना है। आइए हम सब मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हमें बहुत खुशी हो रही है आप आए।
1: थँक यू सो मच सर, हे खरं तर खूप प्रेम करतात लोकं, इतकं जाणवतं ते प्रत्येक वेळेस की किती लोकं माझ्यावरती प्रेम करतात, मी नव्हतं तर त्यांना कसं वाटत होतं हे प्रत्येक जण मला व्हॉईसमध्ये किंवा मेसेजमधून सांगत आहे। तर हे असंच प्रेम करत राहा, ऐकत राहा रेडिओ त्यांना 90.4 FM। ऐकवत शूरवीर या चित्रपटातील जे सुंदर असं गीत आहे याचा आनंद सर्वच जण घेऊयात।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

शादी? वो यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।